तक पहुंच गई। ये सितंबर के पूरे महीने में होने वाली बारिश की मामूल की मकदार के मुकाबले में तकरीबन दोगुना है। मूसलाधार बारिशों ने जनूब मगरबी जापान के कागोशिमा प्रीफेक्चर में अमामी इलाके के कुछ हिस्सों को भी मुतासर किया है। जुमे की सुबह तक 1 बजे तक के 1 घंटे में कीकाईजिमा जजीरे पर 64.5 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश से मुतासरा मकामात पर लोगों से अपील की गई है कि वो नशेबी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के साथ साथ दरियाओं में तुयानी और इनके किनारों से बाहर बह निकलने के हवाले से मोहतात रहें। नेपाल में रेस्क्यू टीमें चीन के साथ सरहदी इलाके में आने वाले शदीद अचानक सैलाब के 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी जिंदा बच जाने वालों को तलाश करने के लिए कोशां हैं। वो बिजली घरों के अंदर फंसे हुए कारकुनों की तलाश कर रहे हैं, जहां इत्तलात के मुताबिक इस बात का कवी इम्कान है कि कुछ लोग अब भी जिंदा हो सकते हैं। नेपाल की डिजास्टर एजेंसी का कहना है कि जब से ये आफत आई है अब तक 1,269 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 5 जापानी शहरियों समेत 5,000 से ज़ायद दीगर अफराद अब भी लापता हैं। चीनी सरकारी मीडिया का कहना है कि चीन की तरफ 21 अफराद हलाक हुए और 540 से ज़ायद लापता हैं। सड़कों, बिजली और मवासलाती निज़ाम को वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचने के बायस इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स का कहना है कि मुख्तलिफ बन बिजली घरों में कम अज कम 900 लोगों के फंसे होने का खदशा है। नेपाली फौज की एक रेस्क्यू टीम ने एक प्लांट से मुंसलिक सैलाब जदा सुरंग में कश्तियों के जरिए दाखिल होने की कोशिश की है। दीगर अमले ने एक सुरंग का रास्ता साफ करने की गरज से एक बड़ी चट्टान में बारूदी मवाद नस्ब करने के लिए सुराख किया। हिमालयाई मुल्क नेपाल की चीन के साथ सरहद के करीब गुज़श्त माह आने वाले शदीद अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने के सानहा मुतासरीन की शनाख्त में मदद के लिए 5 जापानी पुलिस अफसरान को नेपाल भेजा जा रहा है। ये रवानगी नेपाल की हुकूमत की जानिब से की जाने वाली एक दरख्वास्त की बुनियाद पर बताई जाती है। इस सानहा में अब तक 1200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 4,700 से ज़ायद लापता हैं, जिनमें 5 जापानी शहरी भी शामिल हैं। नेशनल पुलिस एजेंसी ने बताया कि 5 रुकनी टीम इसकी अपनी एजेंसी के 2 अफसरान और मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के 3 अफसरान पर मुश्तमिल होगी। फिलहाल ये अरकान हलाक शुदगान की शनाख्त करने समेत दीगर मुतल्लिका सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे।

फ्रिज में पांव की ये उंगलियां दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन अब इस वसीतर फ्रेम में इन्हें वाजह तौर पर देखा जा सकता है। इसी तरह नागासाकी की फुटेज में सामने आने वाले वसी फ्रेम्स उन बच्चों के चेहरों के तासुरात को नुमायां करते हैं जो वहां जख्मियों का इलाज होते हुए देख रहे थे। इसके साथ ही इस फुटेज में साबिका शिरोयामा नेशनल स्कूल के अंदरूनी हिस्से का भी एक बड़ा मंजर दिखाई देता है। इस स्कूल की इमारत को एटमी हमले की एक तारीखी यादगार के तौर पर जापान में कौमी तारीखी मकाम का दर्जा हासिल है। ये तारीखी दस्तावेजी फिल्म अक्टूबर में हिरोशिमा सिटी में एक खसूसी नुमाइश के दौरान दिखाई जाने वाली है। इग नोबेल प्राइज़ के नए फातहीन का ऐलान जुमेरात को स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में मुनक़िदा एक तकरीब में कर दिया गया। यह इनाम ऐसी तहकीक के एतराफ़ में दिया जाता है जो पहले लोगों को हंसाए फिर सोचने पर मजबूर करे। अनजहानी जापानी मुहक्क उनो तोकुजी ने 1977 में की गई अपनी तहकीक नाक कैसे साफ की जाए नाक साफ करने का एक एरोडायनामिक मुतालिया पर यह इनाम जीता। वो शुमाली जापान के होक्काइडो खित्ते में वाक़ आसाहिकावा मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस थे। उन्होंने रफ्तार हजम और वक्त जैसे मुख्तलिफ डेटा का मुतालिया किया। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि एक वक्त में एक नतने को साफ करना ज्यादा मुअस्सर है क्योंकि निकलने वाली हवा का दबाव ज्यादा और मजबूत होता है। उन्होंने बताया कि कानों पर दबाव में तब्दीली से आमतौर पर कान में शदीद इन्फेक्शन पैदा नहीं होता। उन्होंने ये नतीजा अख्ज़ किया कि बड़ा और लंबा झटका देकर नाक साफ करना सांस की बीमारियों से बचने के लिए ज्यादा मुअस्सर है। वो जापान से ये एजाज हासिल करने वाले बहुत से दीगर लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। जापानी मुहक्किकीन गुज़िश्ता 20 सालों से मुसलसल ये इनाम जीत रहे हैं। 10 शोबों के लिए इनाम याफ्तगान का ऐलान किया गया। दूसरे फातहीन ने सांप कब काटता है और प्यारे मगर शैतानी दोस्त जैसे मौजूआत का मुतालिया किया। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। बारिश वाला मौसम जापान के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में लिए हुए है जिसके दौरान पीर के रोज तक मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। और नेपाल में रेस्क्यू टीमें चीन के साथ सरहदी इलाके में आने वाले शदीद अचानक सैलाब के एक हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी जिंदा बच जाने वालों को तलाश करने के लिए कोशां हैं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/urdu।

0: 味しいですか？
1: コンサ सबसे मजेदार है।
2: 回答 जवाब देता है।
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: मैं 味噌ラーメン तजवीज करूंगा।
2: ताम जेरे लब कहती है।
0: 味噌ラーメン。
1: 味噌ラーメン。
2: ताम को याद आता है कि यूकी ने उसे वियतनाम में क्या बताया था।
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
1: जापान का रामेन मजेदार है।
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: मुझे 味噌ラーメン पसंद है।
2: ताम यूकी की बात को याद करके कहती है।
0: 私味噌ラーメンにします。
1: मैं 味噌ラーメン लूंगी।
2: लगता है 味噌ラーメンね ताम की पुरानी यादों को ताजा कर दिया है।
1: बल्कि उसके दिल के तारों को छेड़ दिया है। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
3: ご注文は？タムさん、何にする？
0: どれが一番おいしいですか？
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: 私、味噌ラーメンにします。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है कौन सा सबसे मज़ेदार है।
0: दोरे गा इचिबान ओइशी देस का।
2: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों में से सबसे बेहतर के बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं।
1: दोरे के मायनी है कौन सा। इसके बाद का गा जाहिर करता है कि दोरे जुमले का मौजू है। इचिबान का मतलब है अव्वल या सबसे ज़्यादा और ओइशी यानी मज़ेदार। चुनांचे इचिबान ओइशी का मतलब हुआ सबसे मज़ेदार और आखिर में देस का लगाते हुए उठान के साथ अदायगी के जरिए जुमला सवालिया हो जाता है। आज का नुक्ता। मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर की निशानदेही करने के लिए इच्चीबान का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जायके में अव्वल या सबसे मज़ेदार के लिए मज़ेदार यानी ओइशी से पहले इच्चीबान लगाकर इच्चीबान ओइशी बनाया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर के मुतालिक सवाल करने के लिए दोरे का इचिबान पूछा जाएगा। इसमें दोरे के मायने है कौन सा।
2: यानी खाने पीने की कुछ चीज़ें सामने हो और उनमें से सबसे मज़ेदार चीज़ कौन सी है पूछना हो तो दोरे का इचिबान ओइशी देस का पूछेंगे। ठीक है ना।
1: जी बिल्कुल ठीक।
2: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
5: ओइशी देस। इचिबान ओइशी देस। दोरे का इचिबान ओइशी देस का।
2: जी सामईन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: अब सबसे बेहतर के इंतखाब से मुतालिक एक मकालमा सुनिए। एक ग्राहक जापानी मिठाइयों की दुकान में है और बेहतरीन मिठाई का इंतखाब करना चाहता है।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमास का।
3: कोरे गा ओसुसुमे देस।
1: अब इस मकालमे की तशरी।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमास का।
2: कौन सी सबसे मकबूल है।
1: निंकी गा अरिमास यानी मकबूल है। इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है और अरिमास फेल आरू यानी होना की मास शक्ल है।
3: कोरे गा ओसुसुमे देस।
2: मेरी तजवीज ये है।
1: कोरे यानी ये और ओसुसुमे यानी तजवीज या सिफारिश।
2: तो सुनिए और दोहराइए।
5: निंकी गा अरिमास। इचिबान निंकी गा अरिमास। दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमास का।
1: अब कुछ और खसूसियात में अव्वल मालूम करने की मशक करें। फर्ज करें कि आप सूटकेस खरीदने के लिए किसी दुकान में हैं और दुकानदार से पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता की जापानी है
5: यासुई। यासुई।
1: तो सामीन कोशिश करें।
4: दोरे गा इचिबान यासुई देस का। दोरे गा इचिबान यासुई देस का।
1: अब फर्ज करें कि आप किसी रेस्तरां में हैं जहां बहुत सी अकसाम के सेट मेन्यू हैं। आपको सेट में मौजूद हर चीज़ की अलग अलग कीमत नहीं मालूम। चुनांचे आप वेटर से पूछना चाहते हैं कि इनमें सबसे बाकिफायत सेट कौन सा है। बाकिफायत की जापानी है
5: ओतोकुना। ओतोकुना।
1: ये ना इसमें सिफत है। जब ना इसमें सिफत जुमले के आखिर में हो तो उसका आखिरी हिस्सा ना हटाकर उसकी बजाय देस लगाया जाता है। तो सामीन आप किस तरह पूछेंगे सबसे बाकिफायत कौन सा है।
7: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
2: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
1: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मकालमे में वेटर ने इस्तेमाल किया है
3: गोचुमोवा।
1: गोचुमोवा के मायने हैं आप क्या लेंगे। रेस्तरां या कैफे में वेटर ग्राहक से ऑर्डर लेने के लिए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। चूमोन का मतलब है ऑर्डर। इससे कबल का गो ग्राहक को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाद का वाह मौजू को ज़ाहिर करता है। यानी गोचूमोन वाह का लफ्जी तर्जुमा हुआ आपका ऑर्डर। इसके बाद का हिस्सा क्या है बगैर कहे भी वाज़ेह है, इसलिए हज़फ़ कर दिया गया है।
2: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
8: गोचूमोवा।
9: गोचूमोवा।
1: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें कायतो मुख्तलिफ चीज़ों में से इंतखाब पूछता है।
3: タムさん、何にする？
0: どれが一番おいしいですか？
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: और अब खाने के शौकीन कायतों के मशहूरों का कॉर्नर। आज का मौजू रामेन है।
1: रामेन नूडल्स डिश है। गूंधे हुए आटे की बारीक पट्टियों या नूडल्स को गर्म पानी में उबालकर प्याले में सूप के साथ पेश किया जाता है। इसमें ऊपर से उबले हुए अंडे, गोश्त के पारचे या सब्जियों जैसी टॉपिंग्स डाली जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर चीनी पकवान है। तहम जापान में मुनफरद तब्दीलियों से गुजरने के बाद अब ये जापान की नुमाइंदा डिशों में से एक है।
2: वैसे रामेन कई इकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
1: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक या सिर्फ सब्जियों के अज्जा से तैयार करता रामेन भी दस्तयाब है।
2: और अब तो रामेन के नित नए जायके भी दस्तयाब हैं।
1: जी हाँ, बावर्ची नए जायकों की तैयारी जारी रखते हैं। मसलन अब पनीर और गाढ़ी क्रीम के जायके बनाए गए हैं। कई इलाकों में वहाँ के मखसूस अंदाज के रामेन भी हैं। मकामी खानों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद जहाँ भी जाते हैं वहाँ के मकामी जायकों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।